9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज़ हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। अब आज की बाकी खबरें। जापान की वजारत दिफा का कहना है कि इसके एक तबाहकुन

0: शहरी जहाज ने मुल्क में पहली बार टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के लाइव टेस्ट का तजुर्बा किया है। ये संगे मील एक ऐसे वक्त में उबूर हुआ है जब टोक्यो अपनी दिफाई सलाहियतों को तेजी से मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। वजारत ने कहा कि यह तजर्बा जापान के वक्त के मुताबिक बुध को बहरुल काहिल में किया गया, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि बहरी सेल्फ डिफेंस फोर्स के तबाहकुन बहरी जहाज जो काई से टोमाहॉक मिसाइल दागा जा सकता है। एजिस से लैस जहाज ने मार्च तक टोमाहॉक लॉन्चिंग की सलाहियत हासिल कर ली थी। इसे सितंबर के आसपास जुनूब मगरबी जापान में सासेबो की बंदरगाह पर वापस जाना है। वजारत का कहना है कि अमरीकी साख्ता टोमाहॉक जापान की जवाबी हमले की सलाहियतों का हिस्सा है। इन मिसाइलों की रेंज तकरीबन 1600 किलोमीटर है। वजारत मार्च 2028 तक ऐसे 400 तक मिसाइल तकरीबन 169.4 बिलियन येन या लगभग 1.04 बिलियन डॉलर में खरीदने का इरादा रखती है। वजारत के साथ दीगर एजिस से लैस बहरी जहाज़ों को भी टोमाहॉक दागने की सलाहियत का हामिल बनाए जाने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा की पट्टी में इस्लामी ग्रुप हमास ने गैर मुसल्ला होने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ये माहदा बोर्ड ऑफ पीस के साथ किया गया जो गजा में अबूरी इंतजामिया की निगरानी के लिए कायम शुदा बैन अलावामी तंजीम है। ट्रंप ने जुमेरात को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आज बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास और दीगर तमाम मुसल्लह ग्रुपों को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के लिए एक तारीखी मुआहदा किया है। बरतानवी पब्लिक ब्रॉडकास्टर BBC ने भी जुमे को खबर दी है कि हमास के एक सीनियर एहलकार की जानिब से बताया गया है कि इस ग्रुप ने गजा में मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होने के बोर्ड ऑफ पीस के मंसूबे से इत्तेफाक किया है और ये कि इसका एक बाज़ाब्ता बयान जल्द ही जारी किया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि इसराइल ने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है। अगर हमास गैर मुसल्लह हो जाए और इसराइली अफवाज इस पट्टी से वापस चले जाएं, तो फलस्तीनी इलाकों के अमन अमल में बड़ी पेशरफ्त मतवक्को है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स का कहना है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इलाकाई इंतखाबात के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक झड़पें मकामी कानून साज असम्बली के लिए पीर को मुनक़िदा वोटिंग के बाद हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबी असलाहत का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन की एक कस्बे के इर्द गिर्द सिक्योरिटी एहलकारों के साथ झड़प हुई। वहां की सूरत हाल की तफसीलात अभी तक नामालूम हैं क्योंकि हुक्काम ने मकामी इंटरनेट सर्विस मुनक़ता कर दी है, लेकिन रॉयटर्स ने एक एहतजाजी ग्रुप का हवाला देते हुए बताया कि इस बार हलाकतों की तादाद 30 से ज़्यादा है। दरियसना मकामी मीडिया ने सिक्योरिटी हुक्काम के हवाले से कहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों का एक रुकन हलाक हो गया। इंतखाबी असलाहत और मकामी सियासतदानों की मराहत के खात्मे का मुतालबा करने वाले इस एहतजाजी ग्रुप को गुज़िश्ता माह गैरकानूनी तंजीम करार दिया गया था। गुज़िश्ता माह भी इस ग्रुप की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प जानलेवा साबित हुई थी। खित्ते के दीगर अजला में अगस्त में पोलिंग के मजीद मराहल होने वाले हैं, जिससे मजीद झड़पों के खदशात बढ़ रहे हैं।
1: आखिर में आम खबरों का खुलासा। कुमामोतो में जलजिले के बाद हलाकतों की तादाद 35 हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक जापानी हुकाम ने येन को सहारा देने के लिए ज़रे मुबादला मंडी में मदाखलत की है और इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

0: कुछ देर को कहते हैं
1: चोत्तो चोत्तो।
0: पहल आराम करना की जापानी है यासुमु, और इसकी मास शक्ल है
1: यास्मिमास यास्मिमास।
0: तो सामीन कोशिश करें
2: चोत्तो यास्मिमाशो चोत्तो यास्मिमाशो।
3: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमले बना लिए होंगे।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का लफ्ज मकालमे में मियाँ ने बर्फ के फनपारे को देखकर कहा था। ये सिर्फ एक मुख्तसर सा लफ्ज है, लेकिन है बहुत कारामद, इसे याद कर लें।
4: सुगोई
0: सुगोई के मायने है शानदार या हैरत अंगेज। ये कोई चीज देखकर हैरत से दंग रह जाने या इंतहाई मुतासर होने की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है।
3: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
5: सुगोई
4: सुगोई
6: सुगोई।
3: सामीन अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
1: सुगोई।
0: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम मिलकर तस्वीर बनाने की तजवीज देती है।
4: सुगोई ताम मीते मीते ओकी देसु ने हजुमेते मिमाशिता।
5: どうやって作ったんだろう。
4: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
7: いいね。
1: ミーヤのトラベルガイド。
3: अब मिया का सफरी हिदायतनामा। आज का मौजू जापान का सरे फहरिस्त सियाहती मकाम होक्काइडो है।
0: होक्काइडो जापान का सबसे शिमाली प्रीफेक्चर है। वहाँ वसी और रीज मैदानी इलाके भी हैं, दलदली खत्ते भी, सहरंगेज खूबसूरत झीलें भी और कुदरती गर्म चश्मे भी। इन कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद वहाँ जाती है। मुल्क के बाकी इलाकों के बरक्स होक्काइडो में मौसम में बरसात नहीं होता और गर्मी भी कम पड़ती है। ये खसूसियात इसे ज्यादा मकबूल बनाती है।
3: अच्छा अनवर साहब, होक्काइडो के कुछ काबिल-ए-दीद मकामात के बारे में भी बताएं।
0: फुरानो में लवेंडर के खूबसूरत खेत एक मकबूल मकाम है। जुलाई में पहाड़ी ढलानों पर तहद निगाह हल्के उदे रंग का कालीन सा बिछ जाता है।
3: वाह, ये मंजर तो वाकई खूबसूरत होगा।
0: यकीनन। इसके अलावा यूनेस्को के आलमी कुदरती वरसा मकाम शिरेतोको में गिलहरियाँ और लोमड़ियाँ वगैरह जंगली हयात की बेशुमार अकसाम पाई जाती हैं। अगर आप कश्ती का टूर लें तो वेल मछलियों और भूरे रीछों का नजारा भी मुमकिन है।
3: सुगोई, हैरत अंगेज। वैसे होक्काइडो की सर्दियाँ तो मुंजमद कर देने वाली होंगी।
0: जी हाँ, सर्दियों में वहाँ शदीद बर्फबारी होती है और दर्जे हरारत मनफी होता है, लेकिन इसी वजह से बर्फ मेले या सरमाई खेलों से भी लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। और असाहिकावा शहर के असाहियामा चिड़ियाघर में बर्फ पर कतार में चलते हुए पेंगुइन भी देखे जा सकते हैं।
3: शानदार। बस तो फिर होक्काइडो को मैंने उस फहरिस्त में शामिल कर लिया जहाँ मैंने मुस्तकबिल में जाना है।
0: होक्काइडो के खाने भी शानदार हैं। सिर्फ समंदरी खुराक ही नहीं बल्कि वहाँ रामेन और मटन की डिशें भी मकबूल हैं। इसके अलावा होक्काइडो ताज़ा सब्जियों और फलों के लिए भी जाना जाता है। वहाँ के युबारी खरबूजे, मकई और आलू खुसूसन मशहूर हैं। होक्काइडो का सफर हर लिहाज से पुरलुत्फ होगा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 31 जुलाई शुक्रवार रात 11:30 बजे शांग्रीला चैन और वायला खवानो से सुने समाचार। दक्षिण पश्चिमी प्रिफेक्चर कुमामोतो के अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को आए विनाशकारी भूकंप के बाद मरने वालों की संख्या 35 हो गई है। इस भूकंप की तीव्रता 7.1 मैग्नीट्यूड थी और 0 से 7 के जापानी पैमाने पर इसकी तीव्रता 7 थी, जो उच्चतम स्तर है। इसके बाद से सैकड़ों छोटे झटके आ चुके हैं। लगभग 10,000 की आबादी वाले हिकावा नगर में 120 से अधिक मकान और अन्य इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। लगभग 20 किलोमीटर दूर काशिमा नगर के एक शॉपिंग सेंटर इओन मॉल कुमामोतो में बचाव अभियान जारी है। जोरदार धमाकों से मॉल तहस नहस हो गया है। 12 लोगों को बाहर निकाला गया है, वहीं 7 लोगों की मौत हो गई है और बाकी घायल हैं। रिटेलर इओन का कहना है कि भूकंप के लगभग 80 मिनट बाद मॉल के दक्षिणी हिस्से में विस्फोट हुआ, जिससे दूसरी मंजिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कंपनी का कहना है कि घटना का कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन उसका मानना है कि संभवतः गैस के कारण विस्फोट हुआ है। मॉल में काम करने वाली एक कर्मचारी का कहना है कि कर्मचारियों को समूहों में इमारत के अंदर जाकर कारों और घरों की चाबियां लाने की अनुमति दी गई थी। उसने बताया कि इमारत से बाहर निकलने के लगभग 2 मिनट बाद ही धमाका हुआ। उसने एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी और देखा कि राख जैसी कुछ चीज उसकी ओर आ रही है। अधिकारियों के अनुसार यात्सुशिरो शहर में निप्पॉन पेपर इंडस्ट्रीज के एक कारखाने की चिमनी गिरने से 11 लोग फंस गए थे। सभी को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 9 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक 374 राहत केंद्रों में 9,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। जापान तटरक्षक बल का कश्ती जहाज इमारी मंगलवार के भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कुमामोतो प्रिफेक्चर के उकी शहर में मिसुमी बंदरगाह पर जल वितरण और अन्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक जहाज पर नहाने की निशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी। जहाज पर पावर आउटलेट भी उपलब्ध हैं, ताकि लोग अपने स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों को चार्ज कर सकें। अधिकारियों का कहना है कि जापान तटरक्षक बल का एक अन्य कश्ती पोत यात्सुशिरो बंदरगाह पर आत्मरक्षा बल के पानी के ट्रकों को जलापूर्ति कर रहा है। सूत्रों के अनुसार जापानी अधिकारियों ने येन को मजबूत करने के इरादे से विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है। बृहस्पतिवार को न्यूयॉर्क में कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले येन में तेज वृद्धि देखी गई और येन कुछ समय के लिए 157 के स्तर तक पहुंच गया। जापान की मुद्रा में लगभग 5 येन का उछाल देखा गया और ये करीब 2.5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हाल में येन लगभग 40 वर्षों के निचले स्तर पर बना हुआ था। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क पर कहा कि अमरीका का मानना है कि येन में अत्यधिक उतार चढ़ाव सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उनके अनुसार येन का मूल्य बहुत कम करके आंका जा रहा है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके एक विध्वंसक पोत ने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का प्रक्षेपण किया है, जो देश का पहला है। ये उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब जापान अपनी रक्षा क्षमता तेजी से मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये परीक्षण जापान समयानुसार बुधवार को प्रशांत महासागर में हुआ। इस परीक्षण से ये पुष्टि हुई है कि समुद्री आत्मरक्षा बल का विध्वंसक पोत चोकाई टोमाहॉक मिसाइलें दाग सकता है। ईजिस मिसाइलों से लैस इस पोत ने मार्च तक टोमाहॉक मिसाइल का प्रक्षेपण करने की क्षमता हासिल कर ली थी। ये सितंबर के आसपास दक्षिण पश्चिमी जापान के सासेबो बंदरगाह पर लौटेगा। मंत्रालय का कहना है कि अमरीका निर्मित टोमाहॉक मिसाइलें जापान की जवाबी हमले करने की क्षमता का हिस्सा हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 1600 किलोमीटर है। मंत्रालय मार्च 2028 तक करीब 169.4 अरब येन यानी लगभग 1.04 अरब डॉलर की लागत से ऐसी करीब 400 मिसाइलें खरीदना चाहता है। मंत्रालय संभवतः ईजिस से लैस 7 अन्य जहाजों को टोमाहॉक मिसाइलों का प्रक्षेपण करने योग्य बनाने के लिए उनमें बदलाव करना चाहता है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार इस्लामिक गुट हमास गाजा पट्टी में निरस्त्रीकरण पर सहमत हो गया है। ये समझौता गाजा में अंतरिम प्रशासन की देखरेख के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोर्ड ऑफ पीस के साथ किया गया है। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर बताया, आज बोर्ड ऑफ पीस ने हमास और गाजा में मौजूद अन्य सभी सशस्त्र गुटों के पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। बीबीसी ने भी हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से शुक्रवार को बताया कि गुट ने गाजा में पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए बोर्ड ऑफ पीस की योजना पर सहमति व्यक्त की है और जल्द ही एक आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। खबर में ये भी कहा गया है कि इसराइल ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अगर हमास का निरस्त्रीकरण हो जाता है और इजरायली सेनाएं गाजा पट्टी से हट जाती हैं, तो फिलिस्तीनी क्षेत्र की शांति प्रक्रिया में बड़ी प्रगति होने की उम्मीद है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्षेत्रीय चुनावों के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। स्थानीय विधानसभा के लिए सोमवार को हुए मतदान के बाद हिंसा की खबरें मिली हैं। खबर के अनुसार चुनावी सुधारों की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की एक कस्बे के आसपास सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हुई। वहां की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है क्योंकि प्रशासन ने स्थानीय इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। लेकिन रॉयटर्स ने एक प्रदर्शनकारी गुट के हवाले से बताया है कि मृतकों की संख्या 30 से अधिक है। इस बीच स्थानीय मीडिया ने सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया कि सुरक्षा कर्मियों में से एक की मौत हो गई है। चुनावी सुधारों और स्थानीय राजनेताओं को प्राप्त विशेष अधिकारों को समाप्त करने की मांग कर रहे इस प्रदर्शनकारी गुट को पिछले महीने अवैध घोषित कर दिया गया था। पिछले महीने सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में भी जानमाल का नुकसान हुआ था। क्षेत्र के अन्य जिलों में अगस्त में आगे भी मतदान होगा, जिससे और झड़पें होने की आशंका बढ़ गई है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।